Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह। स्टे ट्यून्ड।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ओलिव, हम नंबर वन।
6: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on old gold exchange. And

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: Cool song.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है
0: Cool song.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: वो पाट दे तुड़ा।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम। मैं हूँ जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.

मेरी जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
2: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: देखिए सेविंग कर करके आपने एक नया आईफोन तो ले लिया, आपने एंड्रॉइड से अपग्रेड करने का फैसला आपने ले लिया, लेकिन अब मेजर सरदर्द ये है कि यार ये जो डेटा है इसे कैसे ट्रांसफर किया जाए, कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन फन का, मस्ती का, मजा का जो है तड़का मार के। अब देखिए यार, इजी आईफोन टू एंड्रॉइड स्विच जो है अब आप कर पाएंगे। गूगल ने एक नया यूटिलिटी टूल निकाला है, तो अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड फोन पे स्विच कर रहे हैं तो अब आप अपनी लाइव ऐप डेटा, लॉगिन स्टेट और फोटो फोल्डर बिना किसी हेडेक के ट्रांसफर कर पाएंगे गूगल की हेल्प से। तो देखो यार, अब मेहनत जितनी करनी है वो सेविंग करने में करनी है, फोटोज वीडियोज और जितना भी डेटा है उसे ट्रांसफर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे देखो दिक्कत तो मुझसे बात करने में भी नहीं आएगी, आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर, बाकी ये भी बता सकते हैं कि आखिर आपका वीकेंड जो है वो कैसा जा रहा है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी इस अमेजिंग वाले गाने के उस पार, सो स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर।

अब देखो यार, मेरा फंडा ना बिल्कुल सिंपल है। मेरा कॉन्सेप्ट लाइफ का इतना ही है कि अगर मैंने कोई नई ड्रेस ली है और उसमें मेरी फोटो नहीं हुई है, मैंने किसी ओकेशन में जो है वो ड्रेस पहनी और उसकी फोटो मेरे पास नहीं आई, मतलब टेक्निकली मैंने वो जो ड्रेस है वो अभी तक पहनी ही नहीं है। जी वेलकम, स्वागत है आपका टेक टॉक वाले शो पे, जहां पर इस वीकेंड पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन मस्ती का मजा का तड़का मार के। मैं हूँ आपकी कशिश। सो देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई नया आउटफिट पहनती हूँ तो उसकी इतनी सारी फोटोज ले लेती हूँ और हर पोज में एटलीस्ट 10-10 फोटोज लेती हूँ, क्योंकि मेरा भाई या कोई भी जो मेरा दोस्त अगर मेरी फोटो ले रहा होता है तो कई बार वो अच्छी फोटो नहीं लेते, तो बिना रिस्क के एक ना एक फोटो तो अच्छी आएगी ना। इसीलिए मैं उन्हें कहती हूँ कि बहुत सारी मेरी फोटोज लेते रहो, पर इससे क्या होता है कि मेरी जो गैलरी है वो पूरी मेरी एक जैसे पोज की फोटोज से भर जाती है। सो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो गूगल ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सो अगर आपके फोन में एक जैसी बहुत सारी फोटोज हो जाती हैं तो गूगल फोटोज उन्हें ऑटोमेटिकली एक स्टैक यानी एक ग्रुप में जो है डाल देगा, ये बेस्ट फोटो को ऊपर रखेगा और बाकी बेकार डुप्लीकेट फोटोज जो है उन्हें अपने आप हाइड कर देगा। तो देखो यार, आपका काम कितना ईजी बना दिया गूगल ने। देखो ऐसे ही जो है गूगल को हमारी लाइफ का इंट्रीग्रल पार्ट ऐसे ही नहीं कहते। मैं हूं आपकी कशिश, एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करके आइए। फिर जरा बात करेंगे एक टेक्नोलॉजी के अमेजिंग वाले फैक्ट के बारे में। सो स्टे ट्यून और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ, जियो बिंदास।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: TECA

देखो जी, ये बात तो हमने पिछले हफ्ते भी की थी कि मुझसे जो है अपने कपड़े फोल्ड नहीं होते हैं, मुझसे पराठा फोल्ड नहीं होता है टिफिन में रखने के लिए अच्छे से, तो फिर मुझसे फोन जो है फोल्ड वाला कैसे ही संभाला जाएगा। जी वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंशो, आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती का मजा का तड़का।

ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा. देखिए जैसे जैसे यू नो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है हमारा काम आसान होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इस फोन को अफोर्ड करना हमारे लिए आसान बात नहीं होगी. मैं वो आपकी कशिश मुलाकात होगी अमेजिंग वाले गाने के उस पार. सो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

भाई पहले वो डिटेक्टिव वाली मूवीज नहीं हुआ करती थी जिसमें आपके उनके डिवाइसेस देख के ऐसा लगता था कि बस एक डिवाइस मिल जाए फिर तो मैं इस दुनिया को पूरी तरीके से बदल दूंगा। हाँ जी वेलकम 106.3 रेडियो एलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टिकटॉक जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती के मजे के तड़के मार के। सो यार देखो वो जो हमारे बचपन की जो एक आस थी वो अब पूरी होने वाली है। हाँ जी सैमसंग और गूगल जो है उन्होंने मिलकर एक नया स्मार्ट चश्मा यानी स्मार्ट ग्लासेस जो है उनको फुल रिवील कर दिया है और ये देखने में ना बिल्कुल नॉर्मल किसी क्लासी चश्मे की तरह दिखते हैं लेकिन रियल टाइम पे जो है स्क्रीन नेविगेशन जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। आपको रस्ते पे जो है चलते चलते बिना फोन निकाले किसी भी रेस्टोरेंट को बुक करने की भी जो है सुविधा मिल जाएगी। तो देखिए यार कितने सारे अलग अलग फीचर्स वाले जो है चश्मे आ गए हैं लेकिन बस मेरे बजट में नहीं आ पा रहे हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा जितना पावर है ना चश्मे का उतने पावर में ये चश्मे बन नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोगों अभी आपके पास बहुत लंबा रास्ता है पार करने के लिए। मैं हूँ आपकी कशिश फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर इन गानों को एंजॉय करो आपको और मेरा वीकेंड जो है और ज्यादा हैपनिंग बनाते हैं मिलकर। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

देखिए यार, अगर टेक्नोलॉजी का कोई अपोजिट चीज है तो वो है मेरी मम्मी ना. मेरी मम्मी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करना चाहती है और ना ही वो मुझे यूज करने देती है. हाँ जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिफ पर. मैं हूँ आपकी कस्टमर शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टेक टॉक, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के मार के. सो देखिए यार, अगर एक बार मम्मी को कोई टेक्नोलॉजी पता चल जाए फिर उस टेक्नोलॉजी को मम्मी पूरी तरीके से यूज़ कर लेती है, और उसको यूज़ करने से पहले मम्मी उसके इतने खिलाफ होती है कि नहीं नहीं, इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही तुम्हारी लाइफ ख़राब हो रही है, इसी टेक्नोलॉजी, इसी फीचर की वजह से तुम आलसी हो रहे हो. वैसे देखो, मम्मी के बाद में कोई दोहराए नहीं है, आलसी तो हम हो गए टेक्नोलॉजी के आने के बाद से. क्योंकि अगर आपको जो है कीबोर्ड पर टाइप करने में बहुत आलस आता है, तो एक नया ऐप जो है आपके लिए कीबोर्ड पर एक माइक बटन ऐड कर देता है. ये स्टैंडर्ड गूगल वॉइस टाइपिंग से जो है बहुत आगे है. तो अगर आप बोलते बोलते बीच में रुकते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो ये आधी हिंदी आधी इंग्लिश में जो है मिक्स जो है उसे बिल्कुल परफेक्टली लिख देगा. मतलब अगर मैं बात करूं तो आवाज़ को बिल्कुल जो है सही से ये डिटेक्ट कर सकता है. करेक्ट पंचुएशन यानी कॉमा, फुल स्टॉप, आप सब इसके साथ लगा सकते हैं और इंस्टेंटली जो है टेक्स्ट जो है वो बदल भी देता है. यानी अगर मैंने कहा कि आई वॉन्ट सम वाटर या आई वॉन्ट वाटर, तो इसने मेरी जो बीच में मैंने ब्लैंक छोड़ा उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा. ये देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया है ना. फिलहाल मेरा काम आसान नहीं हुआ. मैं जाती हूँ पानी पी के आती हूँ. मुझे पानी पिलाने के लिए अभी तक कोई भी डिवाइस जो है वो इजाद नहीं कर पाया है कोई भी. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हम टेक शो कर रहे हैं या हम गूगल शो कर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा खबरें गूगल से रिलेटेड हैं। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसर संसो, आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती मजे का तड़का मार के। सो फिलहाल जैसे मैंने आपसे कहा था कि गूगल के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, और अगर आप मेरी तरह वो इंसान हैं जो बादाम नहीं खाता और पासवर्ड अक्सर भूल जाता है और OTP उन्हें इरिटेट करते हैं, सो गूगल ने अभी एक नया फीचर जो है वो निकाला जिससे आप बिना पासवर्ड या OTP के अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। आपको बस अपने फोन के फ्रंट कैमरे से एक छोटी सी सेल्फी वीडियो बनानी होगी और अपना हेड जो है वो थोड़ा सा घुमाना होगा और गूगल वेरीफाई कर लेगा कि ये आप हो, यानी आप असली ओनर हो, और बस आपकी आईडी जो है वो खुल जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि ये जो है जो आइडेंटिकल ट्विंस है उनके साथ कितना वर्क करता है या कैसे वर्क करता है। मैं हूँ आपकी कशिश, थोड़ी सी देर में मुलाकात होगी और खबरों के साथ। स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनू हाइपरमार्केट में।
2: लूनू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
4: G-E-C.

मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना जिन्हें बुक्स का काफी शौक है, हम जब भी कहीं घूमने जाते थे तो आधा लगेज तो इन लोगों की किताबों से भर जाता था, क्योंकि इन्हें हर जगह अपनी बुक्स लेकर जानी होती है, और एक दो नहीं तीन तीन चार चार बुक्स लेकर जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं जस्ट इन केस अगर नहीं पढ़ते बनी तो क्या करेंगे, कोई और ले लेगा। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन फन का मस्ती का तड़का मार के। तो देखिए, अगर आप भी एक बुक लवर हैं और आपको अपनी बुक्स को जो है इधर से उधर लेकर जाने में जो है काफी दिक्कत आती है, एंड फिर आपके दोस्त और आपकी फैमिली वाले आपको बहुत जज भी करते हैं, तो अब पॉकेट में आने वाला किंडल जो है वो आपको मिल सकता है। तो अगर आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक है और बड़ी स्क्रीन से जो है आंखें जो है थक भी जाती हैं, तो ये जो है एक नया गैजेट लॉन्च हुआ है। ये बिल्कुल आपकी जो है हथेली यानी पाम के साइज का है, एक मिनी किंडल है जो एक यू नो ई इंक स्क्रीन के साथ आता है। इसमें जीरो डिस्ट्रैक्शन है और ये आपके रोजमर्रा के स्ट्रेस को जो है कम करने के लिए बनाया गया है। सो अब बुक रीडर्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बुक रीडिंग भी हो जाएगी, और सिर्फ एक किंडल जो है वो अपने साथ ले जाना पड़ेगा, इतनी सारी बुक्स जो है ले जानी ही नहीं पड़ेगी, और जो है इन्हें कैरी करना भी आसान होगा। तो सूटकेस क्या एक हैंडबैग में भी आप इसे लेके जा सकते। तो मैं हूँ आपकी कशिश, खैर वक्त हो गया है अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का। सो टेक टॉक वाले शो में आप मुलाकात होगी अगले हफ्ते, फिलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, एंड मुझे जो है याद करते रहिएगा। इंस्टाग्राम पे आकर आप मुझसे बातचीत जो है वो जारी रख सकते हैं। बाकी कल मुलाकात होगी हमारे उसी रेगुलर वाले शो पे यानी लाइफ मस्त है पर, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए मैं आ जाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड. सो मैं मुस्कान हूँ आपके साथ और अगले तीन घंटे बहुत सारे गानों के साथ एकदम नई नई बातें और बात करने वाले हैं. कि आपने कभी नोटिस किया है कि फ्राइडे और सैटरडे का अलार्म भी ना कितना प्यारा लगता है, क्योंकि उसके बाद ऑफिस नहीं जाना होता, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुश रहना. किसी का कोई ब्रंच प्लान होता है, किसी का सूख वाकिफ जाने का शाम का प्लान है, कोई बस घर पर एसी, चाय और नेटफ्लिक्स के साथ वीकेंड मना रहा होता है. और ऑनेस्टली हर वीकेंड प्रोडक्टिव होना ज़रूरी भी नहीं है. आई ऑलवेज वॉच सम यू नो इन्फ्लुएंसर्स जो कतर में रहते हैं, जो बताते हैं कि उनका वीकेंड कैसा जा रहा होता है. एवरी वीकेंड दे प्लान फॉर ग्रॉसरी, फॉर देयर नो होल वीक के क्या क्या करना है. और वो देख के मुझे इतना सेटिस्फैक्शन होता है कि यार लोग अपने लिए कितना सोचते हैं. कभी कभी पूरा दिन बिना गिल्ट के रिलैक्स करना भी मतलब एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी है. तो आज का जो शो है वो बिल्कुल वैसा ही होगा. थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, थोड़ा सा फन फैक्ट और बीच बीच में आपके फेवरेट गाने. तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से कि वीकेंड का पासवर्ड क्या है? स्लीप, फूड, फैमिली या फिर फ्रेंड्स? व्हाट्सएप खुला हुआ है 3311106 नंबर, बताइए और चलिए शुरू करते हैं हैप्पी वीकेंड. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाए। स्मार्ट शॉपिंग करे, रिवॉर्ड पाए, ज्यादा मुस्कुराए, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
2: लुलु, where the world comes to shop.

सो एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा एक बार कि वी डोंट स्टॉप प्लेइंग बिकॉज वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड बिकॉज वी स्टॉप प्लेइंग। और सच कहूं ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। बचपन में एक छोटा सा टॉय मिल जाता था और पूरा दिन उसी में दुनिया बसा लेते थे हम। आज भी जब आप बच्चों को देखोगे सो टॉयज उनको मिलते ही उनका पूरा दिन उसी में जाता है। सो आज टॉयज की जगह फोन्स ने ले लिया है, लेकिन अंदर का बच्चा कहीं ना कहीं यू नो आपके पास अभी भी है। इसीलिए कतर टॉय फेस्टिवल मुझे सिर्फ बच्चों का इवेंट नहीं लगता, या फिर पेरेंट्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि नॉस्टैल्जिया फेस्टिव टाइप का है। जुलाई से सितंबर तक, सो अभी जुलाई तो अभी आज 24th है राइट, सो सितंबर तक कतर की डिफरेंट लोकेशंस पर टॉय फेस्टिवल्स चल रहे हैं जहां गेम्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं और वो एक्साइटमेंट भी है जो शायद हमने बचपन के बाद कभी फील ही नहीं की। सो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एडल्ट्स जब गेम्स या प्लेफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन ना नेचुरली कम हो जाता है। मतलब थोड़ा बच्चा बनना साइंटिफिकली भी बहुत हेल्दी होता है। So, I have a question for you. अगर बचपन का सिर्फ एक टॉय आपको वापस मिल जाए तो वो आप क्या you know, पसंद करोगे? वीडियो गेम, बारबी या फिर कोई रिमोट कार आपकी फेवरेट वाली, या वो छोटा सा टेडी जो आज भी you know, कहीं आपके बेड के आसपास रखा होगा घर में। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून, दिस इज हैप्पी वीकेंड विद मी, स्टे ट्यून जियो बिंदास।

सो एक छोटा सा फ्रूट और इतनी बड़ी हिस्ट्री। यस, खजूर सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, मिडिल ईस्ट की कल्चर का एक हिस्सा है। इसे कहते हैं हजारों साल से ट्रैवलर्स डेजर्ट्स में डेट्स इसीलिए कैरी करते थे क्योंकि ये नेचुरली एनर्जी देता है और बहुत देर तक फ्रेश रहता है, और इसीलिए ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करने के लिए सूक वाकिफ में लोकल डेट फेस्टिवल शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सो मुझे ऐसा लगता है उसकी तैयारियां तो चल रही हैं 25 तारीख से, यानी कि कल से ये शुरू हो जाएगा 10th ऑफ अगस्त तक। अगर आप डेट्स पसंद करते हो तो ये जगह डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ, दुनिया भर में 200 से भी ज़्यादा वेराइटीज ऑफ डेट्स जो हैं वो पाई जाती हैं, और हर वेराइटी का टेस्ट जो है वो एकदम अलग होता है। भाई मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ जब मैं किसी सुपरमार्केट में डेट्स लेने के लिए जाती हूँ, समझ ही नहीं आता कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। सो आई एम श्योर हर किसी की अपनी एक फेवरेट डेट्स होंगी। सो बिल्कुल लोगों की पर्सनालिटी की तरह ही आपको दिखेंगी, आप चाय के साथ क्या पसंद करते हो, डेट्स खाना, बिस्किट खाना या फिर वो पकौड़े। सो बताना मुझे 3311063 पर, एंड वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड। नंबर है 3311063 और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है, सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

चलिए आज एक कन्फेशन सेशन करते हैं। सच सच बताना, आपने कभी किसी टैक्सी में कुछ छोड़ा है? मतलब फोन, वॉलेट, कीज या फिर वो सनग्लासेस जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। एक रिसेंट में मैंने लिस्ट देखी थी कतर की, जो दुनिया भर के लोगों की सबसे ज्यादा भूली हुई चीजों में सबसे नंबर वन पे था फोन। भाई कोई फोन कैसे भूल सकता है कैब में। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। उसके बाद कभी कभी लोग लगेज भूल जाते हैं, दूसरे नंबर पे लगेज है, तीसरे नंबर पर है वॉलेट। मतलब ये तो मैंने भी बहुत बार फील किया है, लोग वॉलेट तो भूलते हैं, हेडफोन्स, पासपोर्ट, ठीक है, और फिर आता है वाटर बॉटल। मतलब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ चीज़ें नहीं भूलते, कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, कभी मम्मी का सब्जी लेते आना वाला मैसेज, और उसके बाद जो फ़ोन आता है उसका रिंगटोन अलग ही लेवल का होता है। सो आप मुझे बताइए थोड़ा ऑनेस्ट होके कि सबसे फ़नी चीज़ कौन सी थी जब आप कभी कहीं कुछ अपनी एक चीज़ भूल कर आ गए, और अगर वो वापस मिल गई थी तो उसकी भी कहानी बताना, और नहीं मिली थी तो कितना दुख हुआ वो भी बताना। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311063। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव पर हैप्पी वीकेंड्स, रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

What a beautiful track. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Happy Weekends. So, kabhi dimag hang ho jata hai. Kabhi aisa hua hai ki room mein kisi kaam se gaye ho aur wahan pahunch kar yaad hi nahi aa raha ki bhai aaye kyun the kamre mein. Ya phone haath mein hai aur phone hi dhoond rahe hote ho. Matlab mujhe to aisa bahut baar hota hai. Agar aapko bhi aisa hota hai to welcome to the club. Less experts, agar main baat karu to mujhe aisa lagta hai ki matlab isse kehte hai brain fog. Theek hai, ye koi disease nahi hoti. Kabhi kaam नींद कभी डिहाइड्रेशन कभी स्ट्रेस और कभी ओवर थिंकिंग की वजह से ब्रेन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा ब्रेन ना बॉडी का सिर्फ 2% पार्ट होता है लेकिन एनर्जी लगभग 20% यूज करता है. इसीलिए उसको भी अच्छा फील और अच्छा फ्यूल दोनों चाहिए जैसे वॉलनट. ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है ये. रिसर्च कहती है कि बैलेंस डाइट प्रॉपर स्लीप हाइड्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी को ये सब सपोर्ट करता है. तो आज का चैलेंज भी यही है कि अगर आपके घर में वॉलनट्स खत्म हो चुके हैं तो इस वीकेंड जरूर खरीद के लाएगा. सिर्फ फोन को ही चार्ज मत कीजिए, अपने ब्रेन को भी रिचार्ज कीजिए और बताइए कि आप सबसे ज्यादा क्या भूलते हो. पासवर्ड्स, किसी के नाम या फिर शॉपिंग लिस्ट. मतलब मैं तो पासवर्ड्स कभी याद रखी नहीं आज तक. नामों के साथ ऐसा है कि यार मैं फ़ोन में सेव कर लेती हूँ, अगर किसी से मिलना पड़ जाए या कहीं कोई मिल जाए तो याद आ ही जाता है. प्लस शॉपिंग लिस्ट में हमेशा बिल्कुल ऐसे तैयार रखती हूँ कि ताकि मुझे ना कुछ उल्टा सीधा खरीदने का मन ना करे. बाय द वे, आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अक्सर भूल जाते हो. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

रिवॉल्यूशन, एनर्जी का सीक्रेट. अब ये कोई दवाई या कोई यू नो वैसे कोई ड्रिंक नहीं है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक. ठीक है, नाम है ग्लूकोज रिवॉल्यूशन. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. हम सब ने नोटिस किया होगा कभी लंच के बाद इतनी नींद आती है कि लगता है यार ऑफिस डेस्क ही पिलो बन जाए, और कभी मीठा खाते ही एनर्जी हाई हो जाती है और एक घंटे बाद फिर से लो. और ये सिर्फ मूड नहीं, ब्लड शुगर का गेम भी हो सकता है. इस बुक की ऑथर जो है वो एक सिंपल सी बात बताती है कि हर मील से पहले थोड़ी सी सैलड या फिर वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए और मीठा हमेशा ना मील के बाद. ये छोटे चेंजेस ब्लड शुगर स्पाइक को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं. मुझे इस बुक की ना एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हेल्दी लाइफ का मतलब परफेक्ट डाइट नहीं होता, स्मार्ट चॉइसेस होता है हेल्दी डाइट का मतलब. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपका बिगेस्ट वीकनेस क्या है? चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर कोई मिडनाइट स्नैक जो आप घर में बना के रखते हो और हमेशा यू नो मन करता है आपका कि यार ये तो खाना ही है. सो सुन रहे हैं आप हैप्पी वीकेंड और बताइए कि क्या वो मिडनाइट स्नैक जो है आपका वो खत्म हो गया या इस वीकेंड आपको वो भी खरीदना है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311 1063. मुस्कान है आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनो हाइपरमार्केट में।
2: लूनो, where the world comes to shop.

यार कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो हमें घर याद दिला देती हैं। बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता भाई, कभी कभी घर भी याद दिलाता है। पीकू देख लो आप तो पेरेंट्स याद आ जाते हैं, तारे जमीन पर देख लो तो स्कूल याद आ जाता है, जिंदगी ना मिलेगी देख लो तो दोस्त याद आ जाते हैं, थ्री इडियट्स देख लो तो वो कॉलेज की मस्ती याद आ जाती है। शायद इसीलिए कुछ मूवीज ना हमें बार बार देखने का मन करता है, स्टोरी के लिए नहीं बस उस फीलिंग के लिए। सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, दिस इज हैप्पी वीकेंड्स और मुस्कान है आपके साथ। सो एक बात बताती हूँ, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम फैमिलियर मूवीज दोबारा देखते हैं तो ब्रेन को कंफर्ट मिलता है क्योंकि उसे एंडिंग ऑलरेडी पता होती है। मतलब कंफर्ट मूवी भी एक थेरेपी हो सकती है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि कौन सी बॉलीवुड की मूवी देखते ही आपको घर या पुराने दिन याद आ जाते हैं, नाम जरूर बताइएगा। नंबर इज सेम 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लव
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनू हाइपरमार्केट में।
3: लूनू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

खुश होने के लिए ना लीव एप्लीकेशन जरूरी नहीं है। एक नया ट्रेंड आज काफी पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम है माइक्रो वीकेंड। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। यू नो आई ऑलवेज टॉक अबाउट यू नो कुछ ऐसी चीजें जो आपको खुश करती हैं, जैसे कि वीकेंड हो गया या फिर छुट्टी कैसे प्लान करनी है, कहाँ घूमने जाना है, क्या खाना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।

ऐसी जगह पर जाओगे और अपना टाइम स्पेंड करोगे, कॉफी के लिए, बीच के लिए, सूख वाकिफ या बस एक लॉन्ग ड्राइव वीकेंड के बाद, मतलब आपको ये फील होगा कि यार इस वीकेंड ये मिस हो गया, बट आज के आप मुझे बताइए फ्राइडे के प्लान्स के आपने क्या प्लान किया था और आप कहाँ इस टाइम पर जा रहे हो। कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही काफी होता है बॉस। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून, नंबर है 3311063 एंड यू आर लिसनिंग हैप्पी वीकेंड्स।

आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो कभी कभी जो होता है वो भी अच्छा ही होता है। एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। सो एक आदमी ना एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाता है। कई बार फ्लाइट्स छूटती हैं, कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पर कई बार ना वो सिर्फ अच्छे के लिए होता है। ट्रैफिक सिग्नल्स और बस कुछ मिनट की वजह से उसकी फ्लाइट निकल गई। वो बहुत गुस्सा हुआ, स्टाफ से आर्ग्यू किया, खुद पर भी बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद पता चला कि उस फ्लाइट में इमरजेंसी लैंडिंग हुई और सारे पैसेंजर्स जो हैं वो कहीं एक जगह पर अटक गए हैं। अब उस दिन उसने एक लाइन लिखी, कभी कभी जो चीज़ हमारे हिसाब से गलत होती है शायद वो हमारे लिए सही होती है। लाइफ में भी कितनी बार ऐसा होता है ना, जो नहीं मिला वो बुरा लगा, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ साल बाद समझ आता है कि अच्छा ही हुआ। शायद लाइफ हमेशा हमारे अगेंस्ट नहीं होती, कभी कभी वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। सो आई वॉज थिंकिंग कि इस वीकेंड भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने प्लान की थी पर हुई नहीं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जो पहले बुरा लगा हो लेकिन बाद में वही बेस्ट डिसीजन निकला हो? वीकेंड पर स्टोरीज शेयर करना तो मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे बताइए 3311063 पर कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अक्सर प्लान करते हो पर प्लान के अकॉर्डिंग चलती नहीं है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनू हाइपरमार्केट में।
2: लूनू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा, सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

0: हाथ में है और फोन ही ढूंढ रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है ना, मतलब मेरे साथ तो होता है। सो कभी कभी हाथ में फोन लेकर मैंने फोन ढूंढा है और चश्मा पहनकर पूरे घर में चश्मा भी सर्च किया है। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल है। लोग एक साथ व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम, ऑफिस, सब कुछ चला रहे होते हैं और फिर दिमाग बेचारा सोचता है कि एक एक करके बोलो यार, इसीलिए छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। एक फन टिप देती हूँ, अगर कोई चीज याद रखनी है तो उसे बोलकर रिपीट करिए। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से स्टोर करता है जो आप बोलकर या किसी को बताकर याद रखते हैं। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड। बाय द वे, मैं थोड़ी देर पहले वॉलनट की बात कर रही थी कि आपके अगर ब्रेन फॉग हो रखा है तो आपको वॉलनट जो है वो अपने डाइट में जरूर रख लेना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ब्रेन के फॉग को कम करने में काम आता है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी टिप्स भी आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि भाई बोलकर याद रखना, चाहे वो वॉलेट्स हैं, कीज हैं, घर से निकलते वक्त वाटर बॉटल है, भाई ये सब छोटी छोटी चीजें हैं पर ये आपको हमेशा आदत में लाने तक के लिए बोल बोलकर याद रखनी चाहिए, जैसे बच्चे याद करते हैं। सो दिस इज वन टिप। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

सो लोग ना शब्द भूल जाते हैं पर फीलिंग कभी नहीं भूलते। एक राइटर ने बहुत खूबसूरत सी बात कही थी, लोग ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लोग ये भी भूल जाते हैं कि आपने क्या किया, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया। और सच कहूं मुझे लगता है कि रेडियो भी इसी प्रिंसिपल पर चलता है। शायद कल का गाना याद ना रहे लेकिन वो फीलिंग याद रह जाती है। बिल्कुल वैसे ही लाइफ में एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज्यादा रिस्पेक्ट याद रहती है, काइंडनेस याद रहती है, एक अच्छा वर्ड याद रहता है। सो इस वीकेंड एक काम करिए, किसी एक इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएट करिए बिना किसी रीजन के। हो सकता है कि आपका एक सेंटेंस उनका पूरा वीकेंड जो है वो बहुत ही अमेजिंग बना दे। वैसे आज फ्राइडे है और एवरी फ्राइडे वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, चाहे वो कतर में हो रही एक्टिविटीज़ हो या फिर आपके और मेरे पास पास चल रही चीज़ें हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि भाई फ्राइडे सैटरडे कतर के लोग जो हैं वो सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं। आप किसी भी हाइपर मार्केट के बाहर चले जाओ आज, आपको बहुत लंबी लाइन दिखेगी, ऐसा लगेगा कि यार सब लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि एवरीबडी इज स्पेंडिंग टाइम। बहुत सारे लोग अपना जो वीकेंड है वो थर्सडे से ही स्टार्ट कर देते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो बाय द वे? आज आप किस इंसान को थैंक यू बोलने वाले हो ये भी मुझे जरूर बताना। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Ab suniye, Olive ka Zabardast Hit. Zabardast Hit.

जो तुझको देखा आसमां में चांद था नहीं, कहीं पे छुप गया के कहता लगता नहीं, इससे हसीन मैंने देखा कहीं कुछ के लोग यूं ही

सो आपको क्या लगता है वीकेंड की सबसे ज्यादा खूबसूरत इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स, देखते ही देखते आज का हैप्पी वीकेंड भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया है. पर मेरे जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं करके जाऊंगी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. देखो, हम सब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चाहे वो मनी इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ऐसी भी होती है जिसका रिटर्न लाइफ टाइम मिलता है और वो है टाइम. आज शाम जब मैं यहाँ पर आई और अभी मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, तो फोन को थोड़ा सा जब आप घर जाओगे तो साइड में रखना, एक कप चाय बनाना, फैमिली के साथ बैठना या खुद के साथ, या फिर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो मस्त एक कड़क चाय पीना फोन को बिना देखे. क्योंकि वीकेंड का मतलब सिर्फ दो दिन की छुट्टी नहीं होती, दो दिन की जिंदगी होती है. और जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, सेलिब्रेट करना है. मैं हूं मुस्कान, आप सबका दिल से थैंक यू. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसके पास अपनों के लिए वक्त है. सभी के लिए आई हैव टू से कि इस वीकेंड को एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM. फॉर नाउ आई हैव टू से बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

you. Club Olive. Club Olive Radio. 6.3 FM.

0: this. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive. This is
1: अरे भाई, कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3 FM यू आर लिसनिंग टू क्लब ओलिव.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

Hear this. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Pure Live 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Olive 106.3 FM Gio Bindas.

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.